आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की

0: रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशन की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Navindra Chandra Ram Gulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level

त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बखाते कैसा कक मंग सकलाई जाखा एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 अबे चेबो अबो डिप्लोमा इन त्रिपुरा ट्राइबल फॉक म्यूजिक 3 इयर्स कोर्स निबाके ते डिग्री बी म्यूज इन त्रिपुरा ट्राइबल फॉक म्यूजिक 3 इयर्स डिग्री कोर्स निबाके आरो तंगनै बुकल डांस ते खाम अबो डिप्लोमा निबेचेबो तंगनै ते डिग्री निबेचेबो तंगनै बुकल डांस ते इंस्ट्रूमेंट नो तंगनै रिंगमारी इंगनानि नांगानो डिप्लोमा निबाके मेट्रिकुलेशन याखेबा माध्यमिक पास अबो बाय बाक्सा ते डिग्री निबाके इंगनानि नांगानो अबो हायर सेकेंडरी पास खलाइसा डिप्लोमा इन म्यूजिक जैसा रिकॉग्नाइज बोर्ड नि अबो उंगनानि नांनायखनि साख्लाय जाखा काउंसिलिंग ते सिलेक्शन नि टेस्ट नि सालंखा डिप्लोमा नि बागै सालनै जुलाई 2026 एबा नैसायनि जिदक ते डिग्री नि बागै हनखे सालनै जुलाई नैसाय नैजिदक बरकनि सिलेक्शन नि लिस्ट नंखरनाय सालथाम जुलाई डिप्लोमा नि बागै बहायनो ते डिग्री नि बागै बहायनो आपनो कारै एडमिशन नि डेट ओंखा सालब्रै जुलाई डिप्लोमा नि बागैबो ते डिग्री नि बागैबो एडमिशन ओंनानि बागै डिप्लोमा नि बागै रां चिसा

0: साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय

0: ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी आगरतला।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहां की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास

0: विकास नहीं हुआ या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि

0: को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके

0: ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
1: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
0: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने

0: देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आकाशवाणी अगरतला এতক্ষণ শুনছিলেন বিজ্ঞাপন দাতা আয়োজিত অনুষ্ঠান।
6: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
7: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
8: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
9: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
10: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
11: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
6: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें

0: इग्नोर कर देते। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে বাংলা ছবির গানের অনুষ্ঠান। প্রথম গানখানি শুনুন চেতনা ছবি থেকে, আরতি মুখার্জি এবং বিশ্বজিতের কণ্ঠে।

आसुगजार खोनाबा क्या एम्पोलियन कायपंगनि रोजाबमुंनो बेनियागुला ताबुनि रोजाबमुंनो खोनारजागोन मनोरंजन देव बर्मानि रोजाबमुंनो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को

0: मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अगरतला एखन सुनबेन रवींद्रसंगीत विभिन्न शिल्पी कंठे। प्रथम गान गानी शुनुन शिल्पी जयंती चक्रवर्ती।

0: Continue to rise. China's Commerce Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि

0: संवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिक

0: कारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे

0: बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

0: उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अगरतला।

0: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রথমে হিন্দি ও পরে ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হবে।
1: भवन लिए चलते हैं जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
2: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
3: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture.

0: विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
1: Dear listeners, as we witness this distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
0: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं, जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे, और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। ये ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहाँ पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
1: टोटल ऑफ 105 अवार्ड्स विल बी कॉन्फर्ड टू द अवार्डीज टुडे, अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट दैट ऑनर्स आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी पर्सनल for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
0: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए, और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुविधा प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महा रेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी

गुलाबी रंग, उनकी साड़ी में उनके आगे और पीछे उनके एडीसीज चलते थे। धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा।

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह।
1: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी।

0: और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
1: The first set of awards that
2: अति विशिष्ट सेवा मेडल और साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल उड़ान पायलट।

0: Lieutenant General Neeraj Vashney wishes Seva Medal.
1: Lieutenant General Neeraj Vashney, VSM, the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने सैल्यूट करते हुए सदैव कदमों से और प्राप्त करेंगे वे अति विशिष्ट सेवा मेडल। और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है।
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल बा।
2: Lieutenant General Vikas Rohela, Sena Medal, the Corps of Engineers, to receive the Ati Vishesht Seva Medal.
1: Lieutenant General Vikas Rohela, apne sainik paridhan mein Corps of Engineers ke aap adhikari hain aur apna samman prapt karke Rashtrapati ji ko salute karte
0: hain. Harbinder Singh Vandra, Sena Medal.
1: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद
0: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह वाईएसएम एसएम सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते हुए
0: लेफ्टिनेंट जनरल साक्षी बनते हुए रंजीत सिंह।
2: Lieutenant General Ranjit Singh, the Regiment of Artillery, saluting the President and marching towards the dais.
1: Artillery ke adhikari hain aap, Lieutenant General Ranjit Singh, Regiment of Artillery ke ati vishisht seva medal aur ye salute.
0: Lieutenant General Ajay Kumar, vishisht seva medal.
2: Lieutenant General Ajay Kumar, Vishesht Seva Medal, the Infantry.
1: Infantry ke adhikari, Lieutenant General Ajay Kumar, Ati Vishesht Seva Medal prapt karte hue.
2: Decorated with the Ati Vishesht Seva Medal.
0: Lieutenant General Shamsher Singh Virk, Sena Medal.
1: Lieutenant General Shamsher Singh Virk, Infantry ke adhikari hain aur Bharatiya सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दिए इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह वीआरके रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
0: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: The Brigade of the Guards के Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi सेवा मेडल receiving अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: Lieutenant General Harpal Singh विशिष्ट सेवा मेडल।

0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप। राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए,
1: लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन।
2: लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन, द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स।
0: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन। भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री
1: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा, रेसिपिएंट ऑफ सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल, द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा।
0: ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा VSM प्राप्त कर चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। राष्ट्रपति जी ने उनके सीने पर ये मेडल उनकी शान बढ़ाने के लिए लगाया। पुत्री और पत्नी
1: वाइस एडमिरल आनंद भाई सरदेसाई, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल आनंद भाई सरदेसाई, विशिष्ट सेवा मेडल, विल रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई VSM प्राप्त कर चुके हैं, आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी और इस वक्त प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर।
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है, नेवी का जो अलग सैल्यूट होता है, उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अब प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली।
0: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की। आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के, भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है, इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
3: वाइस एडमिरल सुशील मेनन विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की। विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है, जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए।
3: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी।
0: नौसेना के ही सम्मानों की बारी अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं, उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं, फिर अपने स्थान तक जाते हैं।
2: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: रबारी सर्जन रियर एडमिरल, अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की, जिन्हें VSM मिल चुका है और आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल वायु सेना मेडल।

0: उड़ान पायलट।
1: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी, एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल कोंडन कोलंगारा अबू अहमद संजीव विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल कोंडन कोलंगारा अबू अहमद संजीव VSM एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के सदस्य हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल वर्तमान में एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर वाइस मार्शल नाउ एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
1: एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एयर वाइस मार्शल, अब एयर मार्शल हैं आप सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी राष्ट्रपति जी को।
0: अपर महानिदेशक डॉनी माइकल प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, तटरक्षक मेडल।
2: एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉनी माइकल PTM TM।
1: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डॉनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए
0: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय सेवा मेडल VSM रिटायर्ड।
1: नारी शक्ति का प्रतीक सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, अब सेवानिवृत्त है, लेकिन आज सम्मान करती हुई महामहिम राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें प्रदान करती हुई, और ये इतनी सारी तालियां इस बात का प्रतीक हैं।
0: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा सेना मेडल बार विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा सेना मेडल VSM द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पहल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल VSM द इन्फेंट्री रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अति विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल सुजीत बेगपारा मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी SM VSM द आर्मी एयर डिफेंस।
1: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
0: मेजर जनरल आशीष शाह सेना मेडल।
2: मेजर जनरल आशीष शाह सेना मेडल द आर्मर्ड कॉर्प्स मार्चिंग टू इट्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल आशीष शाह महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए और प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अमर राम दसानी युद्ध सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल अमर राम दसानी युद्ध सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
1: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल अमर राम दसानी राष्ट्रपति।

0: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूद हैं और प्राप्त कर रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल इन्फेंट्री टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: सैल्यूट करते हुए और जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं। और एक जोशीली मुस्कान उनके चेहरे पर सलामी देते हुए
1: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल,
0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, आर्टिलरी का अधिकारी, राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
2: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल। आर्टिलरी का अधिकारी राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
1: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
2: मेजर जनरल वुदे परिदा, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, the Regiment of Artillery, saluting the President and receiving the Ati Vishesh Seva Medal.
0: The Regiment of Artillery ka adhikari Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, inhe pradan kiya ja chuka hai, Ati Vishesh Seva Medal.
2: Major General Sumit Mehta, Vishesh Seva Medal.
1: Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, the Armored Corps.
0: Armored Corps ke adhikari Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal. Ab Rashtrapati ji ne pradan karengi Ati Vishisht Seva Medal.
2: Major General Vikrant Suresh Deshpande.
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं आप, मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
1: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे, इन्फेंट्री।
2: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडवाल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Major General Kuleshwar Singh Datwal, earlier recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
0: Infantry ka adhikari Major General Kuleshwar Singh Datwal, Vishesh Seva Medal se alankrit ho chuke hain aur aaj alankrit honge Ati Vishesh Seva Medal se. Ye ek aur khushi ki baat ki unki putri khud Sena mein hai.
2: Narang.
1: Major General Vivek Narang from the infantry saluting the President.
0: Infantry ke adhikari hain Major General Vivek Narang. Rashtrapati ji ke theek samne apna padak grahan karte hue Ati Vishisht Seva Medal. Garvili muskan, unki putri aur patni taaliyan bajakar.
2: Major General Paranjit Singh Punia, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
1: Major General Paranveer Singh Punia, Seva Medal, Vishesh Seva Medal, will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
0: Infantry ke ek aur adhikari Paranveer Singh Punia, Vishesh Seva Medal, Ati Vishesh Seva Medal, prapt karenge Rashtrapati ji se.

0: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के ही अधिकारियों की बारी चलती हुई, बहुत सेवा की इन्होंने राष्ट्र की, सशस्त्र सेनाओं की, और अब बारी है मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर की।
2: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर YSM SM रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेना मेडल, सेना मेडल, सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: युद्ध सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। टुडे इट्स हिज टर्न टू रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी SM BSM मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।

0: Major General Avinder Pal Singh Bal, Sena Medal.
1: Major General Avinder Pal Singh Bal, Seva Medal.
2: Infantry ke ek aur adhikari, Major General Avinder Pal Singh Bal, Ati Vishisht Seva Medal, aaj unhe prapt hota hua Rashtrapati ji ke haathon, jo ki sashastr सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
0: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
2: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल।
1: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल इज एन एक्स रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: Rear Admiral Nirbhay Bapna, Vishisht Seva Medal.
1: The next recipient of Ati Vishisht Seva Medal and Rear Admiral Nirbhay Bapna, Vishisht Seva Medal.
2: Abari aa rahi hai nau sena ke adhikariyon ki Rear Admiral Nirbhay Bapna, Vishisht Seva Medal. Aaj sammanit ho rahe hain Ati Vishisht Seva Medal se Rashtrapati ji ke haathon se.
0: Air Vice Marshal Kaushik Chatterjee.
1: Air Vice Marshal Kaushik Chatterjee, Medical, to receive the Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायुसेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चटर्जी राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
1: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल इज एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ वीएम फ्लाइंग पायलट।
2: आभारी भारतीय वायुसेना के इस पायलट की एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ अति विशिष्ट सेवा मेडल आज गणतंत्र मंडप में उन्हें प्राप्त होता हुआ।

0: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishisht Seva Medal.
1: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishisht Seva Medal, Aeronautical Engineering, to receive that Vishisht Seva Medal.
2: और अब वायुसेना के एक और अधिकारी एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार, एयर वाइस मार्शल वाडापल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विंग के अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, VM flying pilot,
2: अब भारती,
1: receiving that विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह,
1: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन फाइटर कंट्रोलर।
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल आपकी सेवाओं के लिए।
0: एयर वाइस मार्शल

0: Manu Medha, Vice Sena Medal, Udan Pilot.
1: Air Vice Marshal Manu Medha, VM, Flying Pilot, is the next recipient of Ati Vishisht Seva Medal.
2: और अब बारी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की एयर वाइस मार्शल मनु मिढा की. आप एक पायलट हैं.
0: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
2: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, विशिष्ट सेवा मेडल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई, इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, VSM, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल संदीप कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
1: Major General Sandeep Kumar, Vishisht Seva Medal, the Judge Advocate General Department, retired, is receiving Tati Vishisht Seva Medal.
2: Major General Sandeep Kumar, Vishisht Seva Medal, the Judge Advocate General Department, retired ho chuke hain, Ati Vishisht Seva Medal prapt karte hue Rashtrapati ji ke kar kamlon se aur salute.
0: Major General Parag Anant Deshmukh, Sevanivrat.
1: Major General Parag Anand Deshmukh, the Army Medical Corps, retired, is the next recipient of the Ati Vishisht Seva Medal this evening.
2: Army Medical Corps ke Major General Parag Anand Deshmukh ab retire ho chuke hain, prapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal.
0: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, Udan Pilot, Sevanivrat.
1: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, flying pilot, retired.
2: और अब राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर, आप वायुसेना में उड़ान पायलट थे, रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से.
0: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
1: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर, VSM, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटायर्ड, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग में रहे और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम संभालने वाले एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए
0: ब्रिगेडियर पवन धुल, विशिष्ट सेवा मेडल.
1: ब्रिगेडियर पवन धुल, VSM, द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स.
2: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी ब्रिगेडियर पवन धुल विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से. अब बारी सैल्यूट की.
0: सुबेदार एच होकाटो सेमा, 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित.
1: सुबेदार एच होकाको सेमा, 9 असम, रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड्स.
2: सुबेदार होकाको सेमा, कौन नहीं जानता इन्हें, भारतीय सेना के हैं लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं 9 असम के. राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे. युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है. आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर साउथ सदर्न कमांड का नेतृत्व करते हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हैं.

0: राष्ट्रपति जी से।
1: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, PVSM AVSM, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
2: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल मनीष खन्ना, AVSM, VM Flying, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, AVSM, SM, द पैराशूट रेजिमेंट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
0: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को मिलता हुआ। अति विशिष्ट सेवा मेडल, पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
1: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, AVSM, VSM, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर, AVSM, YSM, फ्रॉम द असम रेजिमेंट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: द असम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ AVSM एंड YSM फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ AVSM, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती, AVSM, VSM।
0: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप, एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की, आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर एयर कमोडोर प्रभात

0: Malik, Vayu Sena Medal, Udaan Pilot.
1: Air Commodore Prabhat Malik, Vayu Sena Medal, Flying Pilot, receiving the Uttam Yudh Seva Medal.
2: वायुसेना के ही एक और अधिकारी अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, एयर कमोडोर प्रभात मलिक.
0: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, उड़ान पायलट.
1: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, फ्लाइंग पायलट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: और अब बारी वायुसेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें. यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर.
3: अब परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे. अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल. सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
1: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग.
2: और बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की. सबसे पहले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, एवीएसएम है, वीएसएम है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल.
3: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
1: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं.
3: वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल.
1: The next recipient of the Padam Vishish Seva Medal this evening is Vice Admiral Sanjay Vatsayan, AVSM NM.
2: भारतीय नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल संजय वात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल, नेवी मेडल प्राप्त कर चुके हैं. परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं.
3: वाइस एडमिरल अजय कोचर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल.
1: Vice Admiral Ajay Kochar, Ati Vishish Seva Medal, Nau Sena Medal, receiving the Param Vishish Seva Medal.
2: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए. वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं.
3: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एवीएसएम, वीएम, वीएसएम, फ्लाइंग पायलट, इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित. अब भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं.
3: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल.
1: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं.
3: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
1: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए.
3: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल.
1: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल.

0: सेवा मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल इसी श्रृंखला में आज जुड़ने जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली UYSM, AVSM, SM, VSM from the infantry to receive the Param Vishisht Seva Medal.
1: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Rashim Bali Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
2: Lieutenant General Manish Mohan Eri Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal.
0: Lieutenant General Manish Mohan Eri YSM, AVSM, SM from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही UYSM, AVSM, YSM, SM from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही प्राप्त करते हुए अपना सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: The next recipient of the Param Vishisht Seva Medal this evening is Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha, AVSM, SM from the infantry.
1: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha Ati Vishisht Seva Medal, Seva Medal prapt kar chuke hain, prapt karte hue Param Vishisht Seva Medal.
2: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal.
0: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal from the Army Air Defense receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: Army Air Defense ke adhikari Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha aprapt karte hue Param Vishisht Seva Medal.
2: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal.
0: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal to receive the Param Vishisht Seva Medal.
1: Armored Corps ke adhikari hain aap, Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal prapt kar chuke hain aur aaj prapt kar rahe hain Param Vishisht Seva Medal Rashtrapati ji ke kar kamlon se.
2: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
0: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: Abari Nari.

0: शक्ति की। वाइस एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और आज गौरव से प्राप्त कर रही हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं मैकेनिकल विंग में। एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल सूरज सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट सेवानिवृत्त।
2: The next recipient of Param Vishisht Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, AVSM, VM, VSM, retired.
0: भारतीय वायु सेना के पायलट रहे हैं एयर मार्शल सूरत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अब पारी है परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया की। आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अपना पदक राष्ट्रपति जी के हाथों से।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिटायर्ड।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी, भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रिटायर्ड।
0: और अब बारी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना की अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप रिटायर हो चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड विल रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: कोर ऑफ सिग्नल्स में आपने काम किया था, लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल वायुसेना मेडल सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेना मेडल एंड वायु मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना में रहकर आपने बहुत उड़ाने भरी है, एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं।
0: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान, अर्लियर रिसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, इज नाउ रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के कर कमलों से। मेडल प्राप्त करने के बाद उन्हें सैल्यूट करते हुए
0: मेजर जनरल रुपेश मेहता, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल रुपेश मेहता, सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने की। आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं।
3: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, PVSM, AVSM, CM फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट, हेडक्वार्टर्स, नॉर्दर्न कमांड।
2: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं। प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा
3: मेडल। एयर मार्शल नगेश कपूर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
1: एयर मार्शल नागेश कपूर, PVSM, AVSM, VM, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल नागेश कपूर की। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप फ्लाइंग पायलट हैं भारतीय वायुसेना के।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार।
1: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, UISM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी।
2: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी विशिष्ट सेवाएं दी आपने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
1: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेना मेडल, वायु सेना मेडल फ्रॉम फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
3: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त।
1: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, PVSM, AVSM, NM, रिटायर्ड।
2: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह,

0: अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
1: एयर मार्शल सेवाएं दी थी। नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: The next recipient of Sarvottam Youth Seva Medal is Air Marshal Jitendra Mishra, AVSM, VSM flying pilot, retired.
0: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को। और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए।
3: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
0: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी।

0: वातान तानी फाल फाली जाने के माइर खे गबा मान मान जाओ हे नगो फाइने हे बो हे हरंगो ताने नगो थाली हाइन ब्रहा बलंग टे टे बलंग हे वाई मान नाबा सर इसे टक्रु तमसा खारमा नगई दंग आरो टे थानी बिहान वा कहम टंको बिहान तैसे वा बुंको बिहान सिंह तान खाई तैसे वा कबांग मानको आमनो फारी बेरायने नाइते नाइते नाइते नाइते आखनी बड़ो आरो बरं कथर मानी टाउनजागै बड़ा बलंग खे बेरायने दम नगारय बन आरो सिंग्राय तत्तरबाय मासे सिंग्राय मासा मासा सिबुक सुसुरक तरबायो गारनि वा कह कह तरबाय मानि वा थैसे याक जाक बायो बलंग कतर दंडकार बनाब दंड राजानी बलंग बलंग
1: राजानी
0: बलंग आरो वा तान्दे तान्दे तानी दै बटक टख्लै टख्लै बरो बाजार फालै फालै यां बाक्सा तान तान
1: थाकुपर वा ताने ओ तैति कसगै मातलांता गामि ओ फागार
0: ओंखायनो आ ताहुसिनि र आ दन्दकार बन थाङा देखायनो या कलक बिर मासा मालायखिया ओ या कलक बिर बाहाय बसायसुं न खरक सिनि रमै मासुं मना बसायसुं मासुगु आसे या कलक ओ ता ब्रक ताहुसिनि थाङो गा ताहुसिनि न जे या फलं मना बबासों लगु आसे या कलक
2: आसे या कलक
0: आबो आसे या कलक बिर फान गना ओंखायनो आरो टाउनिसोर फारि फारि नोंसिनि दल' आइ या कलक बिनो बरं लगिन थैखा ओंखाय बर' वा तानथानै माइरं माइखौ मा होदोंखाय माइसालाय फुरुखाय बर' नबो दै
2: साखा
0: ओंखाय दाइसा हासालाव बलङाव थांलायोखा थांलायखा दे ओंखायनो दाम मालाय फारखाय यं खाबुबुक जेरनाय बिर ओ यं हथाव सागर ना सि खन सिगोन बिना बिनि बुंनोसै सियारि मानो हाबा सोग बगियानि ओंखायनो नोर ताम फै दंसा गांर यं खाबु बुक सियारि सियारि आंर न बलंग नहाय दङै ओ से सामन फल फख्रा जाय दं
1: दङरि सायखोनार गाथा
0: फल फख्रा त अनेक फल दङ
1: जाति पर
0: तनाय लेना फल फल पर दङ
1: आसुक जरा आसु आसिनि खाथाम पान्दाव जामि सोलनि पुइले खाक्सा केरंग थमा खनाबाख्या सावि खनारखा जयमनि देव बर्मा
3: আশুক জোড়া খনাবাখ্যা আচু আচানি খাতমা পান্দা তিনি আচু আচানি খাতমানি পান্দ কেরং কথমা সবাই খান রেখা জয়মণি দেববর্মা তিনি খনাবাখ্যা ই কেরং কথমানি বখা খাকসা তাবু খনাবাইন রচাম রচামঙ্গ খরং রেবন কমলাপতি দেববর্মা

0: बरसों बाद ऊँ घूमने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना।

0: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
0: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल

0: तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: Applications launch is going to play a very important role.
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और

0: और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी

0: से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত।